नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। आज दिन रविवार है। सक संबत 1948, श्रावण महीने की 25वीं तिथि है। तदनुसार अंग्रेजी सन 2026 की 16 अगस्त है। इस समय प्रातः की 5:58 हुए है। आप सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिवादन करते हुए हम आज के पहली सभा आरंभ करते हैं।

ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति

इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों के कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुन पाएंगे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी तृष्णा चक्रवर्ती। 7 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 7:05 पर पेश करेंगे आज का दिन। 7:30 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीत।

सुबह 8 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति गीत। आठ बजकर 30 मिनट पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। 8:40 पर आप सुन पाएंगे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम। आज आप सुन पाएंगे इसकी 8वीं कड़ी।

ये जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पोहार आंचलिक बातोरी। नमस्कार, 15 मिनट पर आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत खेलमा कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे खेलमा भक्ति गीत, पेश करेंगे रिचर्ड एल लुसाई और उनके साथियों ने। नमस्कार, 25 मिनट पर आप सुन पाएंगे रांगखल कार्यक्रम। इसमें श्रोता सुनेंगे रांगखल लोकगीत, पेश करेंगे स्वानथांग लियन रांगखल और साथी। एंजेलिन सुचियांग और साथियों की आवाज़ों में जयंतिया कार्यक्रम के तहत नमस्कार 35 मिनट पर आप सुन पाएंगे जयंतिया भक्ति गीत। नमस्कार 45 मिनट पर आप सुन पाएंगे वेते कार्यक्रम। इसमें श्रोता सुनेंगे वेते आधुनिक गीत, पेश करेंगे गाकी नमलाई और साथी।

विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 12:05 पर पुनः आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 1 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1:05 पर आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। मिडडे न्यूज़ रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर 2 बजे और 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर आप पुनः सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे शाम के 4 बजे, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और सभा के अंत में 4:05 पर आप पुनः सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज के इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम संबंधी जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। तो श्रोताओं, लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम भक्ति गीतों के। तो आइए सुने कुछ हिंदी भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों के कार्यक्रम के तहत कुछ हिंदी भजन। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोतावली जो आप प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही है तृष्णा चक्रवर्ती।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर। और मैं हूँ आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं 1 मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम है अनिशा दत्ता और मैं हाफलॉन्ग गॉफ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मुझे डांस करना पसंद है, कंटेंट क्रिएट करना पसंद है। मैं अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और मेरे ड्रीम्स को पूरा करना है। सपनों को देखिए और सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू।
0: वुमेन टाइम के बाद दोस्तों, कॉफ़ी या टी, ये कहने से पहले मैं ये कहूँगी कि कॉफ़ी पीना और टी पीना दोनों ही हमें काफ़ी पसंद है। और दमहासाओ में कॉफ़ी कल्टीवेशन होती है, और उसी पे एक हमारे हाफलों की ही एक शख्सियत जो कॉफ़ी बिजनेस से जुड़कर वो अपना एक कॉफ़ी शॉप भी चलाती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं पहले कॉफ़ी शॉप की ओनर निबिला जिडुंग जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका
2: नमस्कार
0: जी। आप अपना बारे में बताइए।
2: हमारा जन्म हारंगाजाऊ में। हमारा पिताजी का नाम बैकुंठ बाठारी, माई का नाम देरौंदी बाठारी खरेकपसा। तो जन्म होने का बाद में हम लोग वहाँ में पाला बड़ा हुआ है।
0: जी
2: तो हमारा पढ़ाई तो इतना नहीं हुआ, हमारा जो गांव में स्कूल भी नहीं था तो बाहर में दूसरा बस्ती में जाने पड़ता था। तो बीच रास्ता में जंगल

0: कभी कभी जा पाता है, कभी कभी नहीं जाता, दोस्त मिलता तो जाता, दोस्ती नहीं मिलता तो जा नहीं पाता।
1: जी
0: कभी कभी ऐसे है कि हमारा दोस्त दोस्त जो है साथी, तो वो स्कूल जाने इतना उसको पसंद नहीं है, जाने को नहीं सोचता, तो हम जाने से उन लोग को थोड़ा आगे में है, हम लोग को पीछे कौर है, तो हम निकल के जाते तो हमारा दोस्त ने किया करते, जाने को इच्छा नहीं होते तो कभी किताब लुकाई देते हैं, कभी उसको फ्रॉक छुपा देते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते में हम लोग टाइम निकल जाता,
1: जी
0: तो निकल जाने के बाद में तो फिर स्कूल जा नहीं पाता है, तो क्या करे, गौर में भी वापस नहीं आ सकते, गौर में वापस जाने से फिर माई लोग गुस्सा होगा स्कूल नहीं जाते बोल के, फिर स्कूल नहीं जाने तो स्कूल छुट्टी नहीं होने तो हम वहाँ ही रुकते हैं, तो इसे करके दिन भर कर देते, तो इसलिए कभी स्कूल जाते कभी नहीं जाते, ऐसे करते करते हमारा स्कूल तो छूट गया। छूट गया माने बीच में ऐसे हुआ है, हमारा माता पिता के भी बहुत बीमार होते थे,
1: जी
0: तो बीमार होने की वजह से हम स्कूल भी जा नहीं पाते हैं अच्छा से, तो हमारा भाई लोग बहन लोग के भी संभालने पड़ता, घर भी संभालने पड़ता, ऐसे होते होते स्कूल छूट गया, हम इतना पढ़ाई करने नहीं सका, तो उसको बाद में तो हम घर में माता पिता के साथ में बड़ा हुआ, कभी ऐसे है कि हमारा बचपन से ऐसे हमारा ऐसे कि बागान करने का, खुश खुश झूम खेत करने का उसमें ज़्यादा पसंद करता था, तो इसे करते करते मैं बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में तो शादी दिया,
1: जी
0: शादी देने के बाद में तो हम लोग हमारा हस्बैंड हथिकली में था, उसको पोस्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उसको साथ में रहा, तो उसको बाद में तो लड़का बच्चा पाला, लड़का बच्चा बड़ा होने के बाद में हम लोग ऐसे कि हाफलोंग में स्कूल के बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए स्कूल
1: जी
0: हाफलोंग में आया, 1978 को आया है हम लोग अगस्त महीना में, तो उसके बाद में तो बच्चा लोग को देखभाल करा, पढ़ाया लिखाया।
1: जी तो फिर आपने कॉफी शॉप खोलने का कब आपने सोचा?
0: कॉफी शॉप खुलने का ऐसे कि हम लोग जो हमारा हस्बैंड जो रिटायर होने को टाइम आया, तो हम लोग को बिजनेस तो खुश नहीं है, हम लोग को रिटायर होने के बाद में तो खुश ना खुश करना चाहिए,
1: जी
0: तो हम लोग उस टाइम में छोसा है कि खुश ना खुश करे, तो क्या करे, उस टाइम में कॉफ़ी का ऐसे कि डिमांड था, और कॉफ़ी बोट भी था, एफएसडीसी भी था, तो एफएसडीसी ने गांव के लोगों को ऑफर दिया है, जो जितना भी लोग एफएसडीसी बागान करते थे वो बस्ती के लोगों को हैंड ओवर करते थे, तो हैंड ओवर करने के बाद में बस्ती के लोग ऐसे है कि थोड़ा ऐसे कॉफ़ी बागान करने के लिए थोड़ा मेहनत भी करने पड़ता, गांव का लोग तो ऐसे है झूम खेत करता, ये सब में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, और मेहनत भी करने पड़ता है, उसको कैसे करना नहीं करना बहुत कुछ जानकारी होना है, इसलिए वो लोग एपीसीडीसी से जो ऑफर दिया हैंड ओवर किया उन लोगों ने खेत करने नहीं सका, छोड़ दिया, दिशा किसम एरिया में बहुत अच्छा होता था उसी टाइम में, तो 3-4 साल हो गया, बागान तो खराब होते ही जाता है, तो हमारा छोटी बहन का उनका हस्बैंड एफएसटीसी में काम करता था, तो उनने बोला है आप लोग अगर करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, तो हम लोग सोचा दोनों हमारा हस्बैंड और हमसे, तो ठीक है हम लोग दूसरा तो खुश करने का रास्ता नहीं है, कॉफ़ी बागान ही करते, तो बागान किया शुरू किया, करने के बाद में कॉफ़ी भी आया, तो उसको फिर मार्केटिंग का इतना अच्छा नहीं था, सोच नहीं था,

0: हम लोग को यहाँ में जो कॉफी होता है, यहाँ का आदमी इतना जानकारी नहीं है हम लोग को यहाँ कॉफी होता बोल गया। बाहर का आदमी लोग तो जानते ही नहीं था हम लोग को हर दिन महासव में कॉफी होता बोल के।
1: जी
0: तो उसी टाइम में कॉफी भी बहुत अच्छा होता था। तो मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम हुआ, हम लोग तो बागान किया ही 1999 का शुरू किया। शुरू करने के बाद में इतना मार्केटिंग अच्छा नहीं था, बाहर का आदमी जानकारी नहीं था, यहाँ का आदमी तो मालूम नहीं कॉफ़ी कैसे खाता
1: जी
0: पीता
1: जी
0: है, कॉफ़ी कैसे बनाता। तो मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम हुआ बोल के उसी टाइम में हम लोग को पुरंदर लंगठा सा, उसने SLO था हम लोग को दिमा हसाओ के लिए, तो उसने बताया ठीक है आप एक काम करिए, आप मशीन लाइए तो यहाँ का आदमी लोग को भी पीने का जानकारी होगा, यहाँ में कॉफी होगा बोल के भी मालूम होगा, आपके लिए भी थोड़ा सुविधा होगा मार्केटिंग के लिए, आप यहाँ में कॉफी मिलता बोल के आदमी लोग को भी जानकारी होगा खुद अपना कॉफी शॉप खुलने से।
1: जी
0: तो उन लोगों ने मशीन दिलाया सब्सिडी में, तो मशीन से हम लोग ऐसे रोस्ट भी किया, ग्रेन भी किया, कॉफ़ी भी थोड़ा थोड़ा आदमी लोग को ऐसे फंक्शन उंक्शन में भी पिलाया। कभी ऐसे कि कोई जगह में फंक्शन हुआ, कोई जगह में ऐसे क्या बोलता बाहर में कुछ एग्जीबिशन हुआ, तो उसी टाइम में भी हम लोग लेके दुकान भी किया। तो इस सब से जानकारी होते होते बाद में सोचा ठीक है हम भी कॉफ़ी शॉप छोटा सा खुल गया, तो कॉफ़ी शॉप खुला।
1: जी आपकी स्टोरीज एक से बढ़कर एक है बोल सकती हूँ मैं। और आपने जैसे बताया कि फर्स्ट से लेकर कॉफ़ी कैसे स्टार्ट किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है?
0: एक्सपीरियंस तो कॉफ़ी बागान करने में भी बहुत मेहनत करने पड़ता, उसको एक्सपीरियंस तो उसको लगाने का भी तरीका होता है, उसको तोड़ने का तरीका भी होता है, उसको सुखाने के भी अलग अलग।
1: जी
0: जब अच्छा से सुखाएगा तोड़ने का टाइम में भी अच्छा टाइम में तोड़ेगा तो क्वालिटी भी अच्छा होता है।
1: बिल्कुल। हाँ जी, जैसे आपकी पूरी एक फैमिली है, आप कैसे मैनेज करती थी?
0: मैनेज तो हम मिले के सब मिल के करते हैं, वो लोग भी हमारा बेटी लोग भी साथ दिया, हमारा हस्बैंड भी। हम ऐसे कि बागान करने का टाइम में भी हम अकेला अकेला लेबर लोग को साथ में 1 महीना 2 महीना लेबर लोग को साथ में बैठा, उसी टाइम में भी हमारा हस्बैंड भी बोलो हमारा लड़का बच्चा भी बोलो घर संभालिया देखभाल करा, वही है सब मिल के किया है।
1: बिल्कुल जी। अभी जो कॉफ़ी शॉप में जो कॉफ़ी सेल किया जाते हैं, तो
0: हाँ
1: वो क्या दिमासाओ का कॉफ़ी है या पैकेटिंग वाला? दिमासाओ
0: दिमाहासाओ का ही है,
1: का ही
0: खुद का
1: है।
0: बागान का है, थोड़ा खुश मावुर से भी लेता हम, थोड़ा खुश अपना बागान से भी है, ये लोकल है,
1: लोकल, यहाँ पे भी
0: लोकल
1: आपका लोकल ही चल
0: ये
1: रहा है
0: लोकल है।
1: जी।
0: हम इसलिए रखा है बोराइल कॉफी, नाम रखा है बोराइल कॉफी, कॉफी का नाम।
1: कॉफ़ी का नाम बड़ाइल कॉफ़ी। हाँ बहुत सही है। और जब लोग आकर पीते हैं और
0: हाँ
1: एक रिव्यू या कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तो कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है, वही लोग बोलता है आप ऐसे जो दिमा हसाओ में कॉफ़ी शुरू किया है अपना खुद बागान करके, जो कॉफ़ी भी अपना से कॉफ़ी रोस्ट किया ग्राइंड किया पाउडर बनाया, आप मार्केटिंग भी चलाया, तो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी शॉप भी खुला, आदमी लोग आई के पीने मिलता, पीने में बहुत उन लोग को शांति मिलता है लोकल कॉफ़ी बोल के,
1: जी
0: तो उसी में हमारा बहुत खुश है।
1: जी ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको फ्री टाइम या कहे आपकी हॉबी क्या है?
0: हमारा हॉबी तो हॉबी कपड़ा भी बनाता है, बच्चा लोग की भी सिखाता है,
1: जी
0: जो बच्चा लोग हमारा घर में 2-3 आदमी पढ़ाई के लिए गरीब बच्चा लोग को लेके रखा है,
1: जी जी
0: तो उन लोग को हम टाइम मिलने से कपड़ा बनाने भी सिखाता है, कुछ कुछ काम करने भी सिखाता है, ये है।
1: जी जैसे आपने बताया कि आप फ्री टाइम में कपड़ा भी बनाता है,
0: हाँ
1: तो कौन सा वाला कपड़ा बनाते हैं? आपका
0: जो अपना
1: ट्रेडिशनल
0: हाँ
1: वाला?
0: ट्रेडिशनल वाला

0: जी हाँ, तो उसमें भी तो काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स रहते
1: हाँ
0: हैं, तो
1: हाँ
0: आप सबसे ज़्यादा क्या बनाती हैं?
1: सबसे ज्यादा तो हम तो वही अपना ही मेखला ही बनाता है, मेखला बनाता, खोबी सादर, खोबी ऐसे है कि एरी एरी फोका को चादर निकालता ना हम, मैं खुद सूटा भी निकालता है, कपड़ा भी बनाता है।
0: जी कैसा रहता है वो प्रोसेस?
1: प्रोसेस तो ऐसे है कि उसको एरी फोका को फालना है, फालने में जो पट्टा चाहिए, एरी पट्टा बोलता ना, उसको दे के हम लोग फालता है। फालने के बाद में उसको बॉईल, और जो उसको मेच्योर हो जाता ना, मेच्योर होने के बाद में तो वो छूटा निकलता है,
0: जी
1: और छूटा को हम लोग बॉईल करता, बॉईल करने के बाद में छूटा निकलता है, छूटा निकाल के वो निकालने के बाद में ठाट में बनाता है।
0: जी जैसे अभी ज़िंदगी में आप काफ़ी आगे भी बढ़ चुके हैं, आप वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है?
1: वुमेन्स के लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, इंडिपेंडेंट के लिए तो अपना नौकरी करना है, पैसा कमाना है,
0: जी
1: तब इंडिपेंडेंट होता है। बच्चा लोग को भी सिखाने सकता, तब उसमें भी इंडिपेंडेंट होके तो सिखाने पर सकता
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ बिल्कुल जी। आप जैसे कि एक पहले तो आप बस एक लड़की ही थी, उसके बाद से अब माँ है, उसके बाद अभी ग्रैंड मदर भी है, कैसा
1: हाँ,
0: रहा आपका जर्नी?
1: हमारा जर्नी तो क्या बोलेगा, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी टाइम आया है। पहले तो बच्चा लोग फलने में तो अच्छा से, हमारा बच्चा फर्स्ट 3 लड़का 2 लड़की था, तो उसके बाद में बच्चा लोग बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में एक लड़का तो ऐसे क्या बोलेगा, आजकल के दिन में उसको लीवर का प्रॉब्लम आया, उसके बाद में उसको देखभाल करते करते में वो गुजर गया। तो हमारा हस्बैंड भी ऐसे रिटायर का बाद में 3-4 साल का बाद में उसको भी ऐसे जो बीमार मिला, कैंसर बीमार, तो वो भी गुजर गया। उसको बाद में थोड़ा 10 साल तो ठीक ही था, 1 साल में हमारा बेटी, आप लोग सुना होगा ना, नहीं, वो स्कूल का SI था, वो भी 1 साल पूरा हम लोग बाहर में ट्रीटमेंट कराया, उसको भी कैंसर हुआ, कैंसर होने का बाद में ही जनवरी में गुजरा। वही है हमारा लाइफ
0: जी लाइफ का कोई
1: ना।
0: भरोसा नहीं कह सकते हैं वही, फिर भी आपको भगवान ने काफ़ी हिम्मत दिया है,
1: ये
0: आप
1: तो
0: आगे ऐसे ही
1: भगवान
0: चले।
1: का आशीर्वाद है,
0: बिल्कुल
1: एक तरफ में तकलीफ दिया, एक तरफ हिम्मत देने का भी सहारा दिया है ये।
0: बिल्कुल, आप जो इतना एजेड होकर अभी के टाइम में, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आराम से बैठना है एक्चुअल में, लेकिन आप काम करते ही जा रही है, तो उसका श्रेय आप किसको देंगे?
1: ऐसा है कि काम करने में हमारा कुछ दिक्कत नहीं है, और ऐसे बैठने से दुख का ऊपर में दुख आता है, इसलिए काम करके जाना है, काम जितना सकता तो काम करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: हम अभी भी हम बागान में जाते हैं, और बागान में जाके अभी फिर से नया इसे सुपारी गाछी, खमला गाछी, वही सब करते,
0: जी
1: यही है चाहिए।
0: जी आप बागान, मतलब बहुत सारे सब्जी और फ्रूट्स की बागान के बारे में बात करें, आपने क्या क्या लगाया है?
1: उसमें लेबू भी लगाया, सुपारी लगाया, खमला लगाया, लेचू लगाया, आम
0: जी
1: लगाया,
0: सब
1: आप
0: कुछ
1: एक बार
0: भी
1: जाके देखिए
0: जी जी
1: साथ
0: बिल्कुल।
1: में।
0: आपने जो बोला कि आपने लगाया, वो सिर्फ मतलब आप लोग ही खाते हैं या इतना ज़्यादा होता है कि
1: नहीं, अभी
0: बिक्री भी
1: नया
0: कर सकता
1: नया
0: है?
1: हुआ है
0: हाँ
1: इसलिए इतना फ्रूट नहीं निकला है, तो हो जाएगा, इसे मार्केट में भी निकालने की कोशिश करेगा, फिर ताया बाया अपना भाई बहन
0: जी, सबके लिए
1: सब मेहमान के लिए भी, सबके लिए भी, हम तो आने से सबको दे देता है, खिलाता
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: बहुत खुशी लगता है
0: जी
1: लोगों को देने से।
0: बिल्कुल जी। कोई आपकी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो?
1: पुराना में तो हम लोग ऐसे है दोस्ती लोग को साथ में खेला करते थे, शाम में जब टाइम मिलता तो बाहर में खेलता दोस्ती लोग को साथ में, लेकिन आजकल के दुनिया में बच्चा लोग को खुश इस सब में नहीं है, इसलिए दुख भी लगता है।

0: स्कूल जाओ, सामने से ट्यूशन पढ़ो, उन लोग
1: जी
0: को दिमाग में ऐसे इंडिपेंडेंट शांति नहीं है, यही सोचते हैं हम तो।
1: जी
0: दादा दादी लोग को साथ में बहुत प्यार था, दादा दादी लोग बहुत प्यार करते थे, हमारा पिसी लोग आंटी लोग भी बहुत प्यार करते थे।
1: जी
0: वही है, जब दादी लोग मार्केट में जाने से, बाजार में जाने से, उसी टाइम में तो खुश नहीं था ना,
1: जी जी
0: लोजेंस क्या बोलता है वही गुल गुल वाला, उसको लिए हम लोग गाछी में उठ के रास्ता तरफ देखते रहता है, खूब आएगा दादी दादा, वो कैसे खाने मिलेगा। वही
1: जी
0: है, और जब दादी लोग काम करते तो हम लोग भी साथ में काम करता, तो दादी लोग ऐसे है कोई कोई काम में हम लोग को साथ में नहीं लेते थे, फिर भी हम लोग लुखाई लुखाई के वो लोग को छुपाई छुपाई के काम करता था,
1: जी
0: तो कभी गलत कर देने से मार भी खाता, फिर भी हम लोग को दुख नहीं है। बहुत उसी टाइम में बहुत अच्छा था
1: बहुत
0: बचपन
1: लाइफ
0: होने
1: टाइम
0: का।
1: की यादें।
0: हाँ, तो हम लोग मच्छी भी पकड़ता था जो हम लोग छोटा था, तो
1: जी
0: हम लोग को ऐसे है कि हरंग जाऊँ में नदी भी ज़्यादा है, नाला भी ज़्यादा है, माछी भी बहुत होता था, हम लोग खुद भी माछी खीन के नहीं खाता, अपना माछी पकड़ के जो सामने सब्जी अच्छा नहीं है खुश खाने चाहिए तो माछी सामने माछी पकड़ के हम लोग जाके खाता था, ऐसे दिन था। अभी के दिन में तो पत्थरे ही नहीं, नदी में पानी नहीं है, वही सब सोचने से हम लोग बहुत दुख लगता है, ऐसे कि अगर वही सब नदी आगे जैसे रखता तो अभी भी ठीक रहता, माछी भी मिलता।
1: जी
0: आजकल का लोग क्या बोलेगा, अभी सब कुछ ले लेना है, हम लोग को टाइम में ऐसे नहीं था। रूस रूस का ऐसे खाना बोलो, पीना बोलो, जो भी बोलो, एक साथ में हम लोग नहीं लेते हैं, उसको जियाई के रखता है,
1: फ्रेश
0: हाँ फ्रेश रखता है। जैसे कि नदी में माछी रहेगा तो खाल भी खाने मिलेगा, फरसों भी खाने में, आसमें सब खत्म कर देगा तो खाल क्या खाएगा,
1: जी
0: वही सोचना है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन आजकल का दिन में ऐसे है कि आदमी लोग दवाई डाल के माछी एक बार में खत्म कर देता, नदी का पत्थर उत्थर सब उठाई के खत्म, बहुत दुख लगता है। हम लोग जो छोटों का टाइम में इतना नदी में नहाता था, ऐसे नदी में भी इतना पानी अच्छा सफाई था, आजकल तो पानी भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, माछी भी नहीं है,
1: जी
0: तो हम लोग को लाइफ क्या होगा बाद में, हम लोग को बच्चा लोग को लाइफ क्या होगा, हम लोग तो वही सोचता, हम लोग के लिए नहीं सोचता, हमारा अपना के लिए नहीं सोचता, नेक्स्ट जेनरेशन क्या होगा,
1: जी
0: उसका नेक्स्ट में क्या होगा, पानी पीने नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: अभी ऐसे प्रॉब्लम है। हम लोग आगे में हाफ लोग में पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, दिन भर ऐसे सोच आते रहता था, लेकिन अभी साल में एक बार भी सप्लाई पानी नहीं मिलता है, वो क्या वजह से होता है, वो तो हम लोग को ऊपर में ही होता ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हम लोग जैसे यूज़ करता है ऐसा माफी तो प्रॉब्लम आते ही रहता।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल का टाइम जैसे बहुत डेवलप हो रहा
0: हाँ
1: है, वैसा ही चीज़ें भी बदल रही है, हमें वो पहले जैसी चीज़ें नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। अभी हम हमारे कार्यक्रम के शेष तक आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि जितने भी श्रोता है आज आपको सुन रहे हैं, सबके लिए आपकी ओर से एक मैसेज दीजिए।
0: सबके लिए मैसेज तो ऐसा है कि हम लोग अपना के नहीं सोच के सबके लिए भी सोचना है, अच्छा सोचना है, रहना भी अच्छा से रहना है, बच्चा लोग भी बोलिए, बड़ा आदमी लोग भी बोलिए, देश के लिए कौन से अच्छा होता वही काम करना है, हमारा लिए अच्छा होगा देश के लिए बर्बाद होगा एक को भी नहीं करना है, हम लोग सोचना है, अभी सोचने का टाइम आ गया, नहीं सोचने से बाद में क्या होगा नेक्स्ट जेनरेशन में, इसलिए हम लोग सब अच्छा सोच के हम लोग को देश को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा से रखने के, शुद्ध

0: देश रखने के लिए कोशिश करना चाहिए।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी एक मैसेज आपने हमारे साथ शेयर किया है, और हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि हमारे निविला जी जो इतनी एजेड होकर भी इतनी फुर्तीली है और बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है, और आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
1: जी आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम को सभी ने बहुत पसंद किया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला पर आधारित कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कृष्णा चक्रवर्ती।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष

0: और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आप प्रस्तुत है आज का दिन। इसमें सबसे पहले सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे।
2: नमस्कार, आमी ऋषभ देव रॉय। एखन आमी आवृत्ति करब कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर कविता हाट। कुमर पारार गरुर गाड़ी बुझाई करा कलचिहारी, गाड़ी चालाय वंशी बदन संगे दे जाए भाग्ने मदन। হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জে পদ্মা পারে, জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কিনে। উচ্ছে বেগুন পটল মূলো, বেতের বোনা ধামা কুলো, শস্য ছোলা ময়দা আটা, শীতের রেপার নকশা কাটা, ঝাঁঝরি করা বেরি হাতা, শহর থেকে সস্তা ছাতা, কলসি ভরা এখবুরে মাছি যত বেরিয়ে উড়ে। খড়ের আটি নৌকবে আনলো ঘাটে চাষের মে, অন্ধকানায় পরের পথে গান শুনে বিক্রি করে, পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে। ধন্যবাদ।

दोस्तों आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त का दिन इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। 16 अगस्त को भारत और विश्व में कई घटना हुई है जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी कि 16 अगस्त को क्या क्या खास घटना हुई है। सोलह सौ इक्यानवे में वर्जीनिया के एयरटाउन की स्थापना हुई। 1743 में इंग्लैंड के चैंपियन का खिताब जीतने वाले जैक ब्रांटन ने

रूल्स ऑफ द रिंग प्रकाशित किया, जो मुक्केबाजी का सबसे प्रारंभिक नियम कानून है। 1748 में डच ईस्ट इंडियन मैन जहाज गोल्ड मार्शल पूर्वी इंडीज के लिए रवाना हुआ। 1777 में अमेरिकी क्रांति युद्ध के दौरान अमेरिकी मिलिशिया सैनिकों ने बर्मोट के पास वेनिंगटन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को हराया। 1780 में दक्षिण कैरोलिना के कैमडेन की लड़ाई में अंग्रेजों ने अमेरिकियों को निर्णायक रूप से हराया।

1787 में तुर्की ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। 1794 हंगरी के क्रांतिकारी इग्राक मार्टिनोविक्स को बियोना में गिरफ्तार किया गया। धूमकेतु सी 1797 पी 1 1797 में पृथ्वी से 0.087 ने एयू की दूरी पर पहुंचा। 1819 पीटरलू नरसंहार मैनचेस्टर इंग्लैंड घुड़सवार सेना ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। 15 लोग मारे गए और 400 से 700 घायल हुए। में सियामी जुड़वा भाई बहन चांग और एंग वंकर प्रदर्शनी के लिए वेस्टर्न पहुंचे। 1861 में

1861 में फ्रेडरिक टाउन किटविले मिसौरी में झड़पे हुई। 1863 में जॉर्जिया में अमेरिकी गृहयुद्ध का चिकामोगा अभियान शुरू हुआ। 1864 में वर्जीनिया के डीप वाटम रन में युद्ध के चौथे दिन संघीय सेना का हमला हुआ। 1870 में फ्रैन गोल्डस्मिथ ने यह सिद्ध किया कि कर्व बल एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। 1882 में जनरल वोल्सली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना अलेक्जेंड्रिया में उतरी।

1905 मोंगा विद्रोह ने पूर्वी अफ्रीका के जर्मन पोस्ट इफाकारा पर कब्जा कर लिया। 1906 में चिली के वल्पाराइसो शहर में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसने शहर को तबाह कर दिया। आग में 20,000 लोग मारे गए। 1913 में जापान के तोहोको इंपीरियल विश्वविद्यालय ने अपनी पहली महिला छात्राओं को प्रवेश दिया। 1914 में जर्मन सेना ने लीज में अंतिम किले पर कब्जा कर लिया। बेल्जियम के जनरल लेमन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शेर की लड़ाई शुरू हुई।

1921 में डबलिन के मैंसन हाउस में आयोजित अपनी पहली बैठक में डेल के सदस्य ने आयरिश गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

श्रोताओं, 16 अगस्त को देश और दुनिया के इतिहास में कई प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ और कई दिग्गज इस दुनिया को अलविदा कह गया। 16 अगस्त का जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान, भारत की प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और झांसी की रानी जैसी अमर कविता की रचना करने वाली प्रसिद्ध कवित्री। सैफ अली खान, बॉलीवुड के जाने माने लोकप्रिय भारतीय अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। मनीषा कोइराला, नेपाली मूल की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री। वीएस नायपल, त्रिनिदाद और टाबागो में जन्मे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक वीएस नायपल। मैडोना, विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप गायिका और नर्तकी। इनकी जन्म 16 अगस्त आज के दिन हुई। जेम्स कैमरून, टाइटैनिक और अवतार जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाने वाले दिग्गज हॉलीवुड निर्देशक।

16 अगस्त को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, इनमें से पहले है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर वक्ता, कवि और भारत रत्न से सम्मानित राजनेता श्री रामकृष्ण परमहंस, महान संत, विचारक और स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु एल्विस प्रेस्ली, किंग ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से मशहूर अमेरिकी गायक और अभिनेता बेथेल रूथ, अमेरिका के महानतम बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक ओरेथा फ्रैंकलिन, प्रसिद्ध अमेरिका सोल और R&B गायिका।

तो श्रोताओं, ये थे 16 अगस्त में घटने वाले कुछ प्रसिद्ध घटनाओं की जानकारी। और इसी तारीख को जन्मे और निधन हुए कुछ व्यक्तियों की ब्यौरा।

ये गीत अभी आपने सुने खुदगर्ज फिल्म से। आवाज़ें थे मोहम्मद अजीज और साधना सगम की। अगला गीत सुनते हैं डांस डांस फिल्म से, आवाज़ें हैं आलिशा चिनॉय और बप्पी लहरी की।

0: ये गीत अभी आपने सुने डांस डांस फिल्म से, आवाज़ें थे अलिशा चिन्नाय और विजय बेनेडिक्ट की।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं नमस्ते लंदन फिल्म से, आवाजें हैं

श्रोताओ, आइए आप सुनते हैं अगला गीत धुरंधर फिल्म से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम

0: देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की

0: विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
3: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
5: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर

0: तिरंगा लहराया, आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार प्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम।

इसी गीत के साथ ही आज का देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। श्रोतावली जी आप प्रस्तुत है कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के एक प्रायोजित कार्यक्रम।
1: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है, तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं या पीड़िता को मध्य

0: मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉस कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: सखी वन स्टॉप सेंटर सेंट्रल मिनिस्ट्री की एक स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और

जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबराती है इस बात को लेके कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहती है कि हमारी जो, अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहां पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहां पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं। ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है। वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है। आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहां पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी

0: सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज पा रहे, तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट पे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमोसफियर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुआर आंचलिक बातरी।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं लीजिए, अब आरंभ होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम। खेलमा कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ भक्ति गीत। आवाज़ें हैं रिचर्ड एल लुसाई और साथियों की।

खेलमा कार्यक्रम के तहत अभी आपने सुने कुछ खेलमा भक्ति गीत। आवाजें थे रिचर्ड एल लुसाई और साथियों की। इन्हीं गीतों के साथ ही आज का खेलमा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है रांगखल कार्यक्रम। इसमें आइए अब सुनते हैं कुछ रांगखल लोकगीत। आवाजें है स्वानथांग लियन रांगखल और साथियों की।

leng nalung kane leng o sarwal ha.

अभी आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत रांखल कार्यक्रम। इसमें अभी आपने सुने कुछ रांखल लोकगीत। आवाजें थे स्वानथंग लियन रांखल और साथियों की, और इन्हीं गीतों के साथ ही आज का रांखल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। लीजिए आप प्रस्तुत है जयंतिया कार्यक्रम। इसमें आइए आप सुनते हैं कुछ जयंतिया भक्ति गीत। आवाजें हैं एंजेलिन सुचियांग और साथियों की।

कार्यक्रम के तहत अभी आपने सुने कुछ जयंतिया भक्ति गीत। आवाज़ें थे एंजेलिन सुचियांग और साथियों की, और इन्हीं गीतों के साथ ही आज का जयंतिया कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बेते कार्यक्रम। इसमें आइए आप सुनते हैं कुछ बेते आधुनिक गीत। आवाज़ें हैं नाकिन अमलाई और साथियों की।

नाकी नमलाई और साथियों की आवाज़ें की गाई हुई। इसी व्यते गीत के साथ ही हमारे आज के स्थानीय भाषाओं की कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है। प्रेम रतन धर पायो, प्रेम रतन धर पायो, लत मिलन की लायो, प्रेम रतन। आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
2: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
1: जी, विविध भारती देश की सुरीली
2: धड़कन। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
2: बिल्कुल।
1: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है, उनसे भी आपने डांस करवाए। सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है। इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है।
2: बोमन ईरानी
1: को,
2: डैनी डांसोंगपा।
1: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
2: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
1: बहुत प्यारी फिल्म,
2: बहुत प्यारी फिल्म है। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे। एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
1: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत,
2: बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
1: वो उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। केटिको का मतलब होता है लड़की।
1: अच्छा।
2: हाँ, नेपाली
1: शब्द
2: लड़की
1: जी, जी।
2: तो फिर वो गाना की और पता चला कि ओ, डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस।
1: जी, वही।
2: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन

0: था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो
1: हाँ
0: इतने ग्रेसफुल डांसर साबित
1: हाँ
0: कर चुके अपने आप को,
1: हाँ
0: बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे।
1: जी
0: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है,
1: अच्छा
0: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
1: हाँ
0: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया,
1: हाँ
0: एक
1: इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
0: इम्प्रोवाइजेशन। अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा, और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन
1: हाँ
0: दिग्गज कलाकारों को।
1: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
0: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है,
1: हाँ
0: अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ,
1: हाँ
0: अनुपम खेर जी, केटी
1: जी
0: को।
1: केटी को, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें
0: बिल्कुल
1: भी उस मजे
0: बताऊंगी,
1: को, उस
0: बिल्कुल
1: मजे
0: बताऊंगी,
1: वाली जिंदगी को जीना है।
0: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले
1: जी
0: जाऊंगी।
1: जी चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को, और केटी को का मतलब होता है लड़की,
0: बिल्कुल
1: इस उम्र में
0: पहाड़ी
1: भी
0: लड़की
1: बहुत
0: जी।
1: बढ़िया। चलिए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस
1: बिल्कुल.
0: वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं. अमित
0: बिल्कुल
1: जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है.
0: हाँ,
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर.
0: अच्छा
1: उन्हें लगता था मैं जया बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे ये गुड्डी इधर आओ. मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं. तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई.
0: गुड्डी बड़ी हो गई
1: तो मैंने कहा याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है. वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो,
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी जी
1: अमिताभ
0: जी
1: बच्चन और
0: जी
1: संजय दत्त वगैरह. तो हाँ अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है. मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे सेट
0: गुड्डी
1: पे.
0: से मास्टर जी
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर. अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी. तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ.
0: क्या
1: जब मैं
0: बात है,
1: लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
0: पूरा लड़का बन
1: पूरा
0: जाती
1: लड़का बन जाती हूँ.
0: हूँ।
1: मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम. तो मैंने कहा

0: मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई। सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं। फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे, मिस सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ तुमने इतना बढ़िया किया, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।
1: जी
0: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
1: ये
0: कि अब
1: बड़प्पन है।
0: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने, हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सर हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने 1 दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया,
1: जी
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए, और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
1: नहीं, वो
0: दिन
1: परंपरा है
0: हाँ
1: गुरु को गुरु बनाने
0: हाँ
1: की।
0: और वो
1: जी
0: मुझे मास्टर जी कहते थे, तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता
1: हाँ
0: कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं
1: हाँ
0: मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा,
1: अच्छा
0: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी, और आज वो मेरी मास्टर बन गई, और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात।
0: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
1: वो
0: होती है।
1: चीज
0: मैं
1: आपकी
0: ये
1: आंखों में अभी भी दिख रही
0: हाँ
1: है।
0: कि
1: जी
0: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन, और फिर आते अनुपम खेर जी।
1: हाँ, उनका तो जानना है।
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो
1: हाँ बिल्कुल
0: इतने कमाल के एक्टर है,
1: जी,
0: और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में,
1: में।
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है। और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं,
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं
0: वहीं
1: रहते
0: रहते थे। मतलब कि
1: थे।
0: 500 लोग वहीं
1: मजा
0: खड़े हैं,
1: आता
0: 100 150 डांसर वहीं खड़े हैं,
1: जी।
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे हैं, वो ताली भी बजा रहे हैं। और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60 70 के डांसर्स भी थे, और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो
1: हाँ।
0: एक अलग माहौल था उस सेट पे।
1: जी जी जी
0: और उसके बाद डेनी सर,
1: हाँ, उनका भी जानना है। वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने करना है मेरे साथ,
1: हाँ,
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस
1: करते
0: करते
1: थे
0: रहते थे।
1: और वो कॉपी
0: और
1: करते थे।
0: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं,
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी
1: हाँ
0: दिखाते, और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी
0: बहुत
1: हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बरजातिया जी है,
1: सॉफ्टली बोलने
0: बहुत ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी।
0: वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते, बहुत असर पे हाथ रखते हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं, कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना,
1: होगा ना
0: बहुत मजा
1: जी।
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा नहीं
1: होता।
0: होता कभी,
1: हाँ
0: वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था। हम सब
0: या
1: भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं
0: तो
1: तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों
1: कर
0: नहीं
1: ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते हैं।
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में। आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है। साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म

0: बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी।
1: तो
0: आप समझ गई हैं मैं
1: बिल्कुल
0: किसके
1: समझ
0: किस
1: गई,
0: विषय पे बात कर रही हूं, तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू
1: बिल्कुल
0: करें
1: समझ गई।
0: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ
0: जी
1: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
0: जी
1: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
0: जी
1: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ।
0: जी
1: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
0: जी
1: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
0: जी
1: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
0: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
1: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
0: अच्छा।
1: गणेश हेगड़े की जो पोनी है वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
0: जी
1: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
0: जी
1: एक स्केड्यूल करने का,
0: जी
1: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
0: ओके
1: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
0: हाँ,
1: स्कूल में थे हम,
0: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे।
1: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
0: जी
1: रहे थे,
0: जी
1: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए।
0: हम पैसे के लिए गए थे।
1: चलो, वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
0: हाँ,
1: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
0: कोई दिक्कत
1: कोई
0: नहीं है,
1: दिक्कत
0: रिस्क
1: नहीं है,
0: नहीं
1: मम्मी ने
0: है।
1: कहा बेटा चलो करते
0: हाँ
1: हैं, देख लो
0: हाँ
1: क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
0: बहुत
1: मेरी
0: प्यारी
1: पहली
0: फिल्म है, बहुत
1: बहुत
0: प्यारे
1: प्यारी
0: गाने
1: फिल्म।
0: हैं। जी
1: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी, और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो
0: ये
1: वो मेरे
0: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
1: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी,
0: हाँ, भारत की बहुत सारी
1: जो
0: लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
1: जो मुझे मतलब छोटी है लड़की, तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है,
0: जी
1: वो भी बड़े यंग ही थे,
0: हाँ
1: बट वो
0: हाँ
1: बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए।
0: जी
1: उस वक्त कुछ भी सब कुछ नया था,
0: हाँ,
1: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था
0: वही सीख
1: जिंदगी।
0: रहे थे, वही कर रहे
1: तो वो जब देख रही थी, मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला
0: थे।
1: बड़ी अच्छी है, इसको बताना है।
0: जी
1: संजय लीला भंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
0: हाँ,
1: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम
0: बढ़िया
1: करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
0: जी।
1: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
0: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
1: हाँ, और
0: बहुत
1: वो
0: ज्यादा गैप
1: समझते
0: नहीं
1: थे
0: था।
1: कि, वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे, वो
0: जी
1: उनकी
0: बिल्कुल
1: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
0: जी
1: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
0: तो
1: मतलब
0: बताने तो जाना
1: खामोशी के
0: पड़ेगा।
1: बाद मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है
0: हाँ
1: उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल,
0: हाँ
1: तो तू सिखा, सनी
0: हाँ
1: देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा,
0: हाँ
1: गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा,
0: हाँ
1: तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
0: रेपो बन
1: गया,
0: गया था
1: तो वो
0: इज्जत।
1: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले,
0: जी
1: पहली दबंग, मस्त मस्त
0: जी
1: दो नैन गाने किया
0: जी
1: था वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जो क्या करियो आजा जय हो करो, तो वो गाना हिट हो गया।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद में

0: सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग 3 सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक
1: जी
0: रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
1: जी बिल्कुल
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
1: जी
0: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे
1: हाँ,
0: बुलाने
1: डांस बहुत
0: लगे
1: ज्यादा था
0: बहुत ज्यादा,
1: उसमें।
0: राम गोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये चलता रहा चलता रहा, फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया। जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया है।
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजनी
0: अब
1: पड़ी।
0: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था
1: हाँ
0: कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज टू डू ऑल्सो बिकॉज ही वॉज डूइंग इट, वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था
0: ऑरा
1: उस
0: क्रिएट
1: चीज
0: हो गया,
1: का।
0: और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना
1: हाँ,
0: सबसे ज्यादा
1: कई
0: सीन
1: लोग
0: है,
1: रील्स भी उस पे बहुत
0: उसी पे
1: बनाते
0: रील
1: हैं।
0: बनी, दब
1: हाँ
0: स्मैशेस
1: हाँ
0: बने, मैं हिट हो गई,
1: जी
0: मेरा करियर चल पड़ा। तो वो सलमान खान थे, फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया,
1: हाँ
0: उन्होंने जो
1: वो
0: मेरे,
1: पैंट की जेब में उंगली डाल के
0: वो तो
1: कमर
0: गणेश
1: हिलाना
0: आचार्य जी
1: मुझे।
0: ने किया
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: दो गाने उन्होंने किए थे, तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने
1: अच्छा
0: मुझे दिया ये गाना कि
1: अच्छा
0: शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह,
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ।
1: अच्छा
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर।
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
0: बिल्कुल
1: लेके चल रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि खूबत
0: कि ही नोज
1: है,
0: यस
1: काबिलियत है।
0: काबिलियत को देख के
1: जी
0: उन्होंने मुझे बुलाया, राधे में उन्होंने गाना दिया,
1: जी जी
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका? हाँ
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलीन का और सलमान
1: हाँ
0: खान का,
1: हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत है
0: वो
1: जी
0: गाना मुझे दिया बुला के, तो एक
1: जी
0: बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं। और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है,
1: जी
0: बाकी लोगों को लगता है और सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान
1: हाँ,
0: की कोरियोग्राफर।
1: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से।
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे वैसे,
1: जी
0: नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है,

0: श्रोता हमारे साथ है शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, जब
0: हाँ
1: गदर रिलीज हुई थी 2020 से 21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय
0: जी
1: बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बड़जात्या की
0: जी
1: सारी
0: बहुत
1: फिल्में,
0: बड़े
1: बहुत
0: कोरियोग्राफर
1: बड़े
0: हैं।
1: कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी
1: हम
0: उनकी
1: साथ
0: है।
1: साथ हैं, मैंने प्यार किया,
0: हाँ
1: उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ
1: उसके बाद मैने ज्वाइन किया सूरज
0: एक
1: बड़जात्या
0: विवाह
1: को,
0: ऐसा
1: एक
0: भी फिर
1: विवाह
0: आपके
1: ऐसा
0: पास
1: भी,
0: आया था। जी
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया।
0: जी
1: तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनकी बेटी की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में,
0: अच्छा
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, आई सर ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह, जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी,
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं
1: कुछ
0: दूंगी,
1: और
0: मैं
1: काम
0: सिर्फ
1: नहीं
0: इसी के लिए
1: करूंगी, क्योंकि इस
0: डेडिकेटेड
1: फिल्म
0: हूँ।
1: की
0: जी
1: डिमांड होनी चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी,
0: ये
1: 22 साल बाद रिलीज हो रही है,
0: हाँ
1: यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27-28 साल के होंगे, तो
0: जी
1: ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है ये।
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी
1: लेकिन
0: समय की है।
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने।
0: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा
1: हाँ,
0: था।
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया,
0: हाँ
1: वही चैलेंज था। सनी
0: हाँ
1: देओल

0: शर्मा जी के बेटे हैं,
1: जी
0: उनको मैंने अलग स्टेप दिया।
1: हाँ
0: मैंने कहा
1: बिल्कुल
0: कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना।
1: हाँ
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी
0: जो सबसे बड़े हिट हुए। एक
1: जी
0: गाना था चल तेरे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में बहुत
0: जो
1: पसंद किया यूथ ने।
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है। तो
1: हाँ
0: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना,
1: खूबसूरत सेट था वो।
0: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है,
1: हाँ
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है। तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत।
1: बिल्कुल
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने, तो मैं ये कह रही हूँ फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो।
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत
0: आप
1: के।
0: हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ
1: हाँ
0: नहीं सकते पीछे,
1: हाँ
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा।
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर टू सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है,
1: भारत
0: लेजेंडरी,
1: के, भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर
0: बिल्कुल
1: हैं, उन
0: कोहिनूर
1: सबको
0: है वो,
1: आपने काम करवा लिया। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है, 70 60 से लेके 80 90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है। और उनसे काम कराने के बाद गदर टू में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा
0: बिल्कुल
1: है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये
0: बिल्कुल
1: बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता है
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
0: मेरा पहला हीरो,
1: अच्छा
0: मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो, बिल्कुल मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव ही
1: जी
0: थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
1: हाँ तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को, हंसाना
1: रुलाना आसान है।
0: बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटिको में अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा
0: उसके बाद मैंने उनके 2 3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं,
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
0: काफी काम किया
1: है
0: साउथ
1: ना,
0: में,
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12 13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
1: जी
0: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
0: उसके
1: आते हैं।
0: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके, एक्टर शुड टच द सेट एट
1: मतलब
0: सेवन,
1: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होके बैठा
0: बिल्कुल।
1: होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी, असिस्टेंट के साथ मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले हीरोइन

0: गाउन उतारा, बोला पैकअप, बड़ी हीरोइन मैं नाम नहीं लूँ, क्यों? ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7.
1: 7 मीन 7
0: 7 पैकअप. शी स्टार्टेड क्राइंग. ही सेड नो प्रॉब्लम. सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है. वही किया. नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का. लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं.
1: अच्छा,
0: और
1: तो
0: कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
1: हाँ,
0: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके दे के निकल जाते
1: निकल भी
0: हैं.
1: जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है।
0: एब्सोल्युटली.
1: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का चल
1: हाँ,
0: तेरे इश्क में खो
1: हाय हाय,
0: जाते
1: क्या बढ़िया,
0: हैं.
1: बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और
0: प्लीज
1: हम
0: सुनिए.
1: आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, तो मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था,
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को
0: जाएंगे
1: ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी।
1: कदम चली मैं थी, बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से, सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी,
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी दी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
0: कई बार
1: जनरेशन
0: ऐसा
1: के
0: होता था,
1: बच्चे।
0: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है,
0: जी
1: हमारी हमारी
0: जी
1: टीचर है भी हमारी बहुत बड़ी,
0: बिल्कुल,
1: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचर है। हमारी पहली बात
0: रोल
1: होती थी,
0: मॉडल
1: हम
0: होती
1: टीचर
0: थी।
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
0: बिल्कुल।
1: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
0: जी
1: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
0: नॉमिनेशंस में
1: गई,
0: आपका।
1: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
0: मिलता है।
1: से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पर नहीं। मैंने अपने भाई को फोन किया, ऐसे बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके
1: बट
0: जाना।
1: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
0: जी
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
0: जी
1: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
0: जी
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
0: जी
1: है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले।
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ काफी कुछ काफी कुछ। अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
0: जी
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड और अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
0: जी
1: गाने भी अवार्ड्स में थे। फिर
0: जी
1: एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात है।
1: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
0: हम
1: मिल
0: सबकी
1: जाए,
0: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
1: बस
0: नेशनल अवार्ड आना
1: नेशनल
0: चाहिए,
1: अवार्ड आ जाए।
0: जिसने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
1: बिल्कुल
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
0: जी सही
1: पहली बार
0: बात है
1: अपने आप में बहुत।
0: जी।
1: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
0: आपने
1: दोनों
0: बताया
1: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर
0: अलग
1: को देख रहा है, एक
0: जी
1: लेवल अलग है, वो भी बहुत अच्छा।

0: परफॉर्मर है,
1: जी
0: उसके बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि
1: अच्छा
0: उससे एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था।
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं।
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है, और मैं चाहती थी कि शर्जील के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके।
1: करवा दें।
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला, वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना। और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ, और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
1: ओके
0: शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला, मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए, और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: अच्छा
1: डांस
0: प्रभु
1: कर रहे
0: देवा के साथ
1: हो।
0: सामने जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू सर, एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: हाँ,
0: हुआ
1: वो तो
0: है,
1: आ गई।
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया, पूरा गांव शूट कर रहा था, एंड दे ऑल क्लैप्ड, एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गिव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है शॉट लगाऊं, करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ, कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे मुझे, देख रहे। अब मैं रोजों में थी उस वक्त, रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया, और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। सर नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला, मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले, आपका नाम दबंगिनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शबीना
0: सर
1: बन गई दबंगिनी।
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगिनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगिनी शबीना खान, दबंगिनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है।
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में,
1: जी
0: और नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं?
1: हाँ
0: तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में
1: सुरीली
0: बहुत
1: धड़कन।
0: प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा
1: ऐसा भी होता है क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
0: हाँ
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या हो।
0: पूछो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यही निकली।
1: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो हमेशा, पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है।
0: जी
1: ये सारे चीजें यही कहती है
0: जी
1: कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो
0: जी
1: मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में

0: पाने की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात
0: थोड़ी
1: बरतें।
0: एहतियात बरते, थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बट
1: तू देख ले
0: रास्ते
1: तो।
0: तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सब्र होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस,
1: आय है।
0: कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे, अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो,
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही
0: बिल्कुल नहीं कर
1: होती,
0: रही
1: और
0: होती।
1: आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी
0: बिल्कुल
1: बात है शबीना
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको
0: बिल्कुल
1: ऊपर रखो और उनको बचा के रखो।
0: बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब, और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं, यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी
0: हाँ
1: थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम
0: बिल्कुल
1: साथ में बैठे और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है।
1: जी
0: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए,
1: जी
0: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
1: थैंक यू
0: सो
1: सो
0: मच फॉर
1: मच,
0: हैविंग मी।
1: आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है अपना बॉम्बे टॉकी। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा है, फिल्मों का रंग चढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप

दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात कर

रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा, और तब जाकर ये फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बम्बई टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन, इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन, इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई फिल्म सिकंदर, जिसमें ये देशभक्ति गीत था।

इसी तरह सन 1944 में आई फिल्म पहले आपने तो नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने ये गाना गाया था।

यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था। बोल शातिर।

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले भारत में आजादी की अलख जगा रही थी। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन 1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पीएल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पीएल संतोषी ने खुद लिखा था। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था।

सन 1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं। पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलख जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था यशराज फिल्म्स।

0: 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था।
1: किसका रास्ता देखे।
0: गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
2: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे, और यही हुआ।
3: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
0: दीवार में माँ की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट M.A. शेर।
4: क्या पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पे साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी R.D. बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था।

0: 51 साल बाद भी दीवार ऐसी फिल्म है जिसे आप कई बार देखने के बावजूद एक बार और देख सकते हैं। कल्ट फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार। उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूँ, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना। ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है। मैं तो गुलशन के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके दो गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टस्सल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि तुम्हें याद होगा अच्छा गीत है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं।

खुदी के चंटू को के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी, तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले, शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले, क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहां से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहां से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूंछें भी नहीं निकली हैं, मैं काफी छोटा था। तो इतनी देर में रविंदर दवे की एंट्री हुई, तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूं गुलशन बावरा, और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। देखिए, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैंने 44 साल की अपने फिल्म कैरियर में मेरे आज तक 240 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और आप शायद आज के दिनों में गीतकारों को देखिए, एक गीतकार ने एक साल में 300 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं और मेरा 40 साल के, क्योंकि मैंने क्वालिटी में बिलीव किया है, इसीलिए मुझे उन 240 गानों में उतना रुतबा मिला है, लोगों को शायद 5,000 गाने लिखने के बाद भी ना मिला हो। देखिए, जब मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा, और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा, तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की पहली किरण से नहाकर प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश, मुझे देश इस देश से बहुत प्रेम है, इसीलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कदरदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने एक गाना

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुर संगम में ये भजन गाया था।

एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा। उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थीं। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद एस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी। जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थे।

किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलु और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन विलायत्तू में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्ना किली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुड़ू, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैया राजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की

0: में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना।
1: नक नक गो रोको ना मुझे, चौको ना मुझे, देखो ना मुझे, छेड़ो ना मुझे, मेरे संग मत करो चोरा चोरी।
2: गोरी का ताजन, ताजन की गोरी।
0: एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं, जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

5 अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहाँ उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई केंद्र में किया गया है।

0: विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं जिनमें केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले 2 मिसरों में गुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज ये फख्र मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
2: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
1: जी हाँ, आपको याद है?
2: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
1: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
2: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है, मैं लंगड़ा भूत हूँ, मैं लंगड़ा खा जाऊंगा।
1: अच्छा, आपको अभी तक याद है। हाँ। और गाना कौन सा?
2: वो जो हम सब लोग गाते हैं सारे के सारे।
1: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
2: जी हाँ।
1: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
2: जी हाँ।
1: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी, लेकिन अंकल
0: हैं?
1: एक 5 मिनट,
0: पांच मिनट
1: मेरा मतलब 2 मिनट,
0: 2 मिनट में क्या करेंगे आप?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे,
0: क्या?
1: मैंने फौजी भाइयों को नमस्ते करना भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए, चलिए।
1: फौजी भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी, आप बता रहे थे हमें?
1: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
0: बच्चों से कौन से?
1: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
0: अच्छा, उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे,
1: जी हाँ,
0: कोई गाना आपको याद है?
1: वो दादा मुनि का जो गाना था।
0: दादा मुनि, फौजी भाई जानते होंगे, हम अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद
1: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना
0: था?
1: था।
0: हाँ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो
1: हाँ
0: चलिए रेलगाड़ी पे चढ़े,
1: हाँ
0: चलिए
1: चलिए,
0: आइए। आओ बच्चों, खेल दिखाए, छुक कर सी रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी, आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर सब पैसेंजर, रेडी, एक दो। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। बस बस बस बस,
1: अंकल स्टेशन आ गया।
0: चलिए उतरिए।
1: हाँ चलिए,
0: हाँ उतरिए, आइए। चलिए, अब कौन से गाने पे उतरेंगे?
1: अब
0: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको। हाँ, कौन सा सुनाएंगे आप? अच्छा, ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो।
1: अच्छा, वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा?
0: हाँ चलेगा, लेकिन किसने गाया बता दीजिए।
1: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में,
0: वो कौन सा गाना है?
1: वो नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
0: अच्छा चलिए, अच्छा ये तो आप अपनी नमस्ते के साथ सुनाते तो बहुत अच्छा होता ना। चलिए, आप सुनाते हैं।

0: Namaste, namaste, namaste, namaste.
1: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना
1: है। आप भी भूल करने लगे ना।
2: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
1: हाँ, फिर चलेगा।
2: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ रहे थे?
1: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों?
1: मेरे पास एक सवाल है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे?
2: क्या?
1: देखिए, एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
2: ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें, है?
1: जी हाँ।
2: तो चलिए सुनाइए।

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे।
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ गए?
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है?
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे
1: हाँ,
0: कैसे?
1: हम जागृति है ना,
0: हाँ
1: जो फिल्म थी
0: हाँ
1: उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं
0: हाँ
1: और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाइए, आप शुरू कीजिए।

0: राज जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को।
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: हाँ तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज तो से तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे
1: लेकिन
0: दिखाया करते हैं, वो जो जोक
1: अच्छा
0: सुनाया करते हैं
1: कौन सा?
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कहूँ?
0: हाँ, वही
1: हाँ
0: सुनाइए।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बता दें फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसरानी, दूसरा अशिता अशित सेन और तीसरा।
1: किशोर मुखर्जी।
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते गए, मैं होशियार हूँ मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया, वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ हाँ सिर्फ सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर, और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी। सिर्फ एक ही गोली। तो
0: फिर मारा कैसे?
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने एक को बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
0: अच्छा, दूसरा।
1: फिर टर्न आई अशित सेन अंकल की। अंकल ने कहा, अरे अरे अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो, मैं जंगल में गया गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने देखा उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया।
0: बंदूक का लाइसेंस।
1: जी हाँ, बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
0: अच्छा, इन्होंने तो
1: तो
0: लाइसेंस से ही मार दिया।
1: जी हाँ, अब केस्टो अंकल की टर्न आई। उन्होंने कहा, अरे धीरा तो धीरा, घुस भी नहीं है, घुस भी नहीं है, मेरा सुन, वो जंगल में गया, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे, जंगल मेरे पीछे, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे, जंगल मेरे पीछे, सेम, भागा
0: हाँ जी, सुना।
1: भागा भागा, जंगल मेरे आगे, मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी हेगी हेगी जोरदा, वो झाड़ के नीचे एक शेर शेर शेर बैठा था, शेर। वो शेर को मैंने बोला, हे शेर तू जंगल का राजा है, राजा है? तो बोला, हाँ हूँ, तेरी सब लोग सेवा करते, तेरी सब लोग सेवा सेवा करते। तो बोला, हाँ करते हैं। तो तू झेटी झेटी काय को नहीं पहनता है? तू शर्म के मारे मर गया मर गया।
0: तीसरे को आपने शर्म से मार
1: जी
0: दिया।
1: हाँ
0: अच्छा सुनिए, आप मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं,
1: जी हाँ
0: उसके अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
1: जी हाँ
0: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो
1: जी
0: पूछेंगे
1: पूछो,
0: या मैं पूछूं आपसे?
1: जो भी कहें आप
0: चलिए हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
1: पूछिए।
0: अगर अच्छे लगे तो उनके जवाब बताइएगा। हाँ
1: चलिए।
0: जी चलिए।
2: मैं लाल लाल बुझकू, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन हूँ?

0: बताओ नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था जब।
1: अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।
1: ठीक है, मुझे याद है।
2: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया, बस मैं नाचने लग जाता था।
1: अच्छा, शमी अंकल की तरह है ना? अच्छा, अगर वो गाना मैं अब भी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
2: हाँ नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है,
1: क्यों?
2: कोई देखने वाला तो नहीं।
1: अरे फौजी भाई भी देखना, खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ, चलिए।

0: में हिंद के लंबी सितारी।
1: राजू बेटा एक बात जो हम भूल गए।
2: देखिए अंकल आप फिर से भूल करने लगे।
1: नहीं नहीं भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए।
2: अरे हाँ
1: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
2: हाँ उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा।
1: आपको याद है गाना? याद है
2: हाँ।
1: तर्ज भी याद है?
2: हाँ और वैसे मैं आज खुश भी हूँ।
1: अच्छा तो चलिए सुनाइए मैं कैसे गाना।
2: आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा।

0: लंच बेरे, अब आगे चले यहाँ से।
1: लेकिन अंकल
0: जी,
1: आपने एक भूल की।
0: फिर मैंने की? आपने की
1: नहीं की आपने, कह मैं रहा हूँ कि जिस फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम तो आपने बताना ही भूल गया।
0: I'm sorry यार।
1: खैर मैं बता देता हूँ, उस फिल्म का नाम है चित्तचोर।
0: अच्छा, उसके बाद एक और भूल से आप बच के रहिए कि वक्त हो रहा है, हमें चलना है और फौजी भाइयों को नमस्ते कह के उनसे इजाजत लेनी।
1: नहीं अंकल, एक गाना।
0: और गाना कौन सा?
1: वो मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिए।
0: नहीं पर बता तो दीजिए।
1: नहीं, सस्पेंस।
0: अच्छा, गाने भी सस्पेंस वाले।
1: चलिए
0: चलिए सुनाइए।

0: ये थी मास्टर राजू और गुलजार साहब की एक संयुक्त प्रस्तुति जो बरसों पहले विविध भारती पर हुई और अपने संग्रहालय से हमने निकाल कर इसे आपके लिए पेश किया। विविधा कार्यक्रम में आज हमने दो विशेष प्रस्तुतियां आपकी नजर की, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक और इसके साथ ही गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। आज का विविधा कार्यक्रम इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। अब यूनुस खान को दें इजाजत। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर सुनिए विविधा।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता

0: सहायता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
3: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3?
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था, हिमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: सुन, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है
0: जी,
2: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

लता के गाए गीत आज आप सुन रहे हैं यादों की महफिल में।

0: ये चौपाइयां आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पिया मन भाई हेमलता और साथियों की आवाजें थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था। श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन।

judges. भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या

0: विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

फिल्म अंजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओ जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश से जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो प्रकृति के श्रृंगार और मानव मन के अंतर द्वंद और प्रीत से मिलन का मनोहारी रूप का गाढ़ा चित्रण है। सावन में बारिश की रात में हवा से चेहरे के पर्दे का हटना प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये संयोग चमत्कार है जो सत्य सौंदर्य और प्रेम के प्रकटीकरण का रूप लिए है। दो अजनबी का मिलना क्षण भंगुरता में शाश्वतता का अमर और अनंत प्रतीक होने के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस के अंकुरित होने का एहसास दे रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे, और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी तेरे दामन न छोड़ेंगे हम, प्यार हुआ इकरार हुआ और ए नरगिस मस्ताना, ये सारी गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की वो रात शायद इसलिए याद रह गई क्योंकि उसमें मौसम से ज्यादा कुछ और भी बरसा था। दो अजनबी थे एक राह थी थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकही बातें, फिर एक निगाह मिली और लगा जैसे दिल ने सब कह दिया। छतरी के नीचे साथ साथ चलते हुए शायद प्यार ने चुपके से दस्तक दी थी। कुछ पल इतने सारे होते हैं कि उम्र भर की खूबसूरत याद बच जाते हैं।

यही याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं, कि क्या कोई कभी ऐसा मिला जो बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार

ये गीत क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओ? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओ, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म को क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है? घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत बरसात में तुमसे मिले हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना या किसी से मिले लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों ही स्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं। तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है, जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओ कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है? तो बारिश की ये रातें जिनकी याद

उनको आज आप इस कार्यक्रम में ताजा कर सकते हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। जो हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया, लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताजा करनी ही है। साथ ही नरगिस का जो फूल होता है, क्या आपने उसे देखा है? कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है?

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती है कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है लेकिन इसकी किस्मों

नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डेफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर रिमझिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है, यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था। बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया। मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के, हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद है। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है। और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। ये खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओं, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिसे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे, मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अल नीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं। पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोता, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताजा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गजल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफर है, वो कौन सा हम सफर है श्रोता जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रोल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुंह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इंतजार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारी श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो।

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं, और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई। बोले, आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी? उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम ये कहेंगे, रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है, और सावन महीने की

बूंदें उसकी यादें ताज़ा करती हैं और भीगे हुए। और सर, इन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं। आगे एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है और ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओ हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन।

एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे। पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में? श्रोता, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना यानी

तुम्हारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूँ और वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओं, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वादे बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में जगह वृंदावन गए, वहां किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बाहर डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्म आया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था, बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है, प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

0: की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।
1: श्रोताओं, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज़।
2: द हेडलाइंस। NTA रिलीजेस प्रोविजनल आंसर कीज फॉर 84 सब्जेक्ट्स ऑफ UGC नेट 2026। ऑब्जेक्शंस विंडो टू रिमेन ओपन टिल ट्यूसडे। Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of former PM Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on his death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And now the news in detail. The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. Our correspondent reports, the NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August.
3: Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. A processing fee of 200 rupees per question challenged will be applicable. Candidates must support each challenge with documentary evidence. Challenges submitted through any other mode will not be entertained. The last date for payment of the processing fee is 18th of this month. The NTA said a committee was constituted

0: circular economy and adaptation. India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth World Championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a World Championship medal in the mixed doubles. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first Test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first Test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with a 104 runs, his third Test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय. झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा. BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी. और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत. ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं. एक रिपोर्ट.
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं. प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम

0: तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि

0: कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंद्रापड़ा में

0: बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गांव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
4: Good afternoon, Guwahati. Welcome to your favorite Sunday unwind spot right here on Akashvani Guwahati's Mohabahu service. I'm your companion Siddharth, riding the airwaves with you on 411.5 meters, that's 729 kilohertz on your medium wave, and becoming crystal clear on 101.6 megahertz. It's 2:30 on a wonderfully lazy Sunday afternoon, so kick off your shoes, lean back and let the music take over for the next 30 minutes on the Western Music Program. We've got an absolute powerhouse lined up today to keep you locked right here. Let's kick things off by setting the mood. Back in 1990, a project called Enigma redefined chill-out music forever. The first track peaked at number 2 on the UK's single charts and pulled everyone into a dreamy, atmospheric trance.

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आरजू फिल्म का गीता मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन की तर्ज हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मिलन फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

रोशन का संगीत था। साहिर लुधियानवी की रचना आपने सुनी सुधा मल्होत्रा की आवाज में फिल्म बाबर से। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयानंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलोदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश श्यामला, अश्विन और आनंद मनवित दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के,

का ये पत्र है। प्रकाश शील के तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनतार अकोले से राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

ओपन एयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। एसएच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोहरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि।

0: पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं। सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं। मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हमसे

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल ढानवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहदीली खां के बोलों के सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है, और शाहिद दीपक और रुषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से, गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार, और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओ कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते रहिए इसी तरह से अपने पत्र, और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग
1: आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
2: अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार? अरे जल्दी आओ ना।
3: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
2: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
3: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
2: क्यों?
3: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई।
2: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
3: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है टूट फूट कर रहा हूँ।
2: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
3: मजाक ना करो दोस्ता, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह खुला रहा है। हाय हाय हाय, कितना चाहती थी मुझे।
2: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
3: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
2: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
3: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है। कोई कोई सी आय आय आय आय, चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
2: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
3: अरे नहीं तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उतार चल। उतार चल।
2: हाँ कृपा भाई,
3: तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
2: सो तो
3: बोलो ना। तो ऐसा करो तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
2: देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
3: बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी।
2: बताओ
3: बताओ
2: बताओ
3: अब बताओ। अरे वाह,
2: देखो भाई तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलवा दो।
3: आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए,

0: तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
1: हाँ तो
0: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
1: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई, है तो गारंटी नहीं। अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
0: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
1: एक ही बार तो की थी।
0: हाँ, एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
1: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो।
0: बेटी तुम्हारी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं चला दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
1: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
0: अच्छा?
1: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
0: ठीक है, मैं दुलारी को भिजवा देता
1: हूँ। भेजना जरूर। चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय आय।
2: चाचा जी,
1: आ दिलाड़ी तुम आ गई।
2: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
1: अरे वाह वाह, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: लेकिन चाचा जी,
1: कैसे ही बड़ा किया।
2: चाचा जी,
1: तुम क्यों बड़ा हुआ?
2: रूपा किसी को चाहती
1: है। क्या किसी का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
1: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए। रूपा, देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद की आ गई, तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
1: प्यार हो गया, शादी करेंगी। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है, मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
2: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
1: क्या हुआ मेरी बेटी को?
2: बदकिस्मती,
1: दुर्भाग्य। बताते क्यों नहीं, क्या हुआ?
2: रूपा बहन,
1: क्या हुआ उसे?
2: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई, पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मेरे लिए अब एक ही रास्ता है, मौत।
1: और वो नीचे कूद गई।
2: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
1: क्यों क्यों?
2: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है, पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
1: गई। मूर्छित हो गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: चली जाइए,
1: तब तक रूपा को देखते रहना। मैं अभी
2: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने?
3: घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
2: डॉक्टर?
3: हाँ हाँ,
2: अब क्या होगा, डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
3: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा।
2: अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा। चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है?
2: चाचा जी, रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: ऐसी बात नहीं है।
4: मैं डॉक्टर

0: पर बोगस चंद।
1: हाँ बोगस चंद, बिल्कुल बोगस।
0: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
2: और मैं हूँ कविराज
3: मूढ़ानंद।
2: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
4: है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को
1: अरे भाई मैंने कहा अपने मुंह में मिट्टू बाद में बनिएगा। आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
0: क्या तकलीफ है आपको?
2: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
4: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
1: सावधान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
0: आपने पहले क्यों नहीं बताया? नॉनसेंस,
2: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता सकते हैं।
4: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
3: जाइए।
1: वो आ गया। क्या हाल है मेरी बेटी का?
0: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया। बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या मतलब हो जी? पापा, मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
2: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
4: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद?
0: आपने सेंट पर्सन से ही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
2: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
2: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
1: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। तब तक मैं बेटी को देख लूं।
0: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
2: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
4: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
0: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
2: अरे क्यों मिथ्या खतन करते हो, जैसे मुझे ज्ञात ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
0: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
2: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
4: अरे भाई,
2: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
4: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
2: अच्छा,
4: और धोबी चंगा हो गया।
0: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
4: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
0: गधों का इलाज करता हूँ।
2: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप लोगों ने क्या किया?
2: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता।
1: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
2: आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
0: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सर जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
2: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा
4: है। हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
2: हाँ बिल्कुल ठीक।
4: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम। ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपक ही मर्द काफूर हो जाएगा।
1: मगर अकीम साहब,
4: हाँ जी
1: मरीज मैं नहीं, मेरी बेटी है ना।
0: तो क्या हुआ? एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया।
2: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।

0: कुर्सी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को देखने जाते
1: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
2: और
1: तशरीफ ले जाइए
2: के लिए दवा।
1: अजीब नामाकूलों से पाला पड़ा।
3: चाचा जी क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
3: मैं तो पहले कह रही थी
1: लगता है मेरी रूपा को मन कोई दूर कर नहीं पाएगा।
3: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू किसे लाएगी?
3: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है। भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह क्या ताक रही है, जाकर जल्दी से बुला ला। और देख बेटी, बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में
3: मैं सब पक्का कर
1: लूंगी। समझ आ रहा तू?
3: अभी गई और अभी आई।
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी आ। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर जाएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
4: अरे भाई कमाल चाल, डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
1: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
4: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूं बताओ बताओ, तुम्हें बताओ ना।
2: उसके कान में धीरे से कहो,
1: क्या, क्या
2: बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ। बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो उदास चंदा, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
2: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो कि नहीं? बोलो करते हो कि नहीं? बोलो।
2: हाँ, तो हूँ।
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
2: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। हाँ, मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
2: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
2: अब ठीक है, अब मुझे क्या?
1: हाँ हाँ जाओ जाओ दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है।
3: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
5: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना?
3: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
5: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो?
3: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें। बस
5: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज कर।
1: अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
3: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: हाँ। अरे ये डॉक्टर है
3: क्यों?
1: एकदम छोकरा
5: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा?
5: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
1: अच्छा?
5: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
5: ना मैं सुई लगाता हूँ। अच्छा? और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता हूँ।
1: कैसे इलाज करते हो जी तुम?
5: जी चेहरा देख कर श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
1: अच्छा
5: जी हाँ।
3: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी इनके हाथ में जादू है, जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब देख लीजिए।
5: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
3: मगर वो तो बेहोश है।
5: जी हाँ है, नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है, जाकर मरीजा को ले आओ।
3: अभी लाई अभी लाई।
1: कमाल है, वाह वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
5: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
1: मगर डॉक्टर साहब
5: जी
1: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया कितनी दुर्बल हो गई है देखिए।

0: बिल्कुल मैं देखते चल नहीं पाती।
1: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए, मरीज आ गई।
1: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मेरे सामने ही बातें करूँ।
2: मगर चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
0: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
1: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
0: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चलें। रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
0: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर, जाओ। देखो
3: मैं आ गया।
2: मेरी प्राण,
0: दुलारी,
2: मेरी आंखें तुम्हें
0: डॉक्टर क्या गुजर कर रहा है?
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
0: अरे मगर वो तो एकदम सट कर खड़ा है।
2: क्या हुआ चाचा जी? रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना?
0: डॉक्टर साहब
1: जी,
0: डॉक्टर साहब, कुछ पता चला?
1: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा
0: जी? आप पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा को अंदर ले जा, जाने दे।
2: अच्छा अच्छा,
1: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ, अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
0: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
1: जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का
0: भूत।
1: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
0: बिल्कुल
1: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
0: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
1: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
2: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
0: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
1: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
0: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए डॉक्टर।
1: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
0: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
1: जी नहीं, जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
0: फिर क्या करें बताइए?
1: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
0: नाटक?
1: जी हाँ, मेरा मतलब है, रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
0: आपका मतलब है कि?
1: जी हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
0: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
0: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
1: हाँ, ये समस्या।
0: वही वही ना बात।
2: डॉक्टर साहब जी, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
1: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
0: हो तो सकता है, लेकिन
2: अरे लेकिन वेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए। रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
1: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब
1: जी,
2: आप कृपा करके हमारी विनती मान लें, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दें। मैं अभी रूपा को लाती
0: हूं। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
1: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
0: वेरी गुड, गुड।
1: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
0: सही है, बिल्कुल सही।
1: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
0: बहुत अच्छा बेटी, देखो नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
4: क्या ये सच है पिताजी?
0: हाँ, पसंद है।
4: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
0: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
4: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
0: अरे सुन तो दुलारी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक।
4: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
0: अच्छा ठीक है।

0: बेटी अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना।
1: नहीं लेकिन
0: बेटी लाओ तो अपना हाथ ऐसे। हाँ और भाई तुम भी अपना हाथ।
2: लेकिन वो
0: अरे नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाती दो। ला बेटी हाथ दो। हाँ ए जिनो अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
1: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह। अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
0: ये तो ठीक है।
3: जजमान मैं कराऊंगा ब्याह।
0: लेकिन पंडित जी अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है। कहा है ये संसार जो है ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं। तो जजमान वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
0: जी हाँ बिल्कुल।
3: तब ठीक है, तब ठीक है। तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो जो है तो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरी। समझ लो यजमान भावरे भी पड़ गई है। सदाशिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
0: पंडित जी मेरी बात तो।
1: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
0: पक्का होना चाहिए बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ।
3: बोली
0: ये जोड़ी जुग जुग से।
4: यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर।
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम।
3: अच्छा अच्छा जी मैं बोले तो अब हमारी दक्षिणा तुमने जाए जो बैठो।
0: कैसी दक्षिणा? शादी तो
1: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी। पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
3: एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा 5 रुपए तो दीजिए।
0: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा।
3: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
5: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रूपा।
0: अरे तुम लोग कहाँ जाओगे भाई?
1: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
0: ये क्या मजाक है? देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
4: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
0: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदारचंद तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
4: इलाज नाटक भाई ये सब क्या चक्कर है? यानी कि
5: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
0: अरे अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे उदार चंद।
4: हाँ भैया कृपण चंद
0: गए।
4: जाने तो क्या हुआ?
0: उदार चंद के बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। उदार चंद ये डॉक्टर था, डॉक्टर। मेरी लड़की को ले भागा उदार चंद, मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। तुलारी से पूछ लो।
4: तुलारी क्या बात है?
1: कुछ नहीं पिताजी, रूप

0: पापा प्रेम बाबू को चाहती है,
1: ठीक है,
0: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
2: नाटक
3: भाई कृपाण चंद, आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
2: अरे ये क्या हो गया, मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। आया आया अरे अरे भाई उधार चल।
3: हाँ कृपण चल।
2: अरे संभालो
3: हो गया।
2: अरे चक्कर
3: चक्कर चक्कर
2: अरे
4: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मोलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
1: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष

0: में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवायम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 364 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का पहले दौर में मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो, फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था
3: जी,
2: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
3: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
2: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
3: जी जी,
2: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पत्रे की शेड था।
3: हाँ।
2: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गाय हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे, तो वो सारा गोबर ये सब साफ करके उसके बाद बरसात पत्रे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग
3: जी,
2: जिसको
3: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में
2: आती है। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर, पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है
3: जी।
2: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता

0: 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था,
1: जी
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: खेती था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी
1: जी
0: माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे।
0: ओ
1: ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

से बोलो क्या होता है।

0: वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है,
0: जी
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो, और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है, मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
0: वाह,
1: बड़ी बड़ी मूंछें, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां एक 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
0: वाह,
1: वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ, हाँ, मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: जैसे
1: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
0: ओहो हो, पूरी रात,
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
0: बचपन में याद हो गए थे भारूड,
1: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायर और साइलेंट ऑडियंस।
0: अरे
1: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस

0: क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था जो मेरे साथी थे। जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था।

0: तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया क्योंकि चाचा साथ में है, तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो 8वीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है, छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली
0: एक
1: बीड़
0: नई
1: शहर में
0: दुनिया
1: आने के बाद।
0: खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में 3-4 कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4-4.5 हजार स्टूडेंट थे। दूसरा
1: ओहो
0: कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में, बलभीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहां 1-4.5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो, तो वो
1: जी
0: और भी बढ़ गया। वहां यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है,
1: जी
0: 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है,
1: जी
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहां। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है।
1: एकदम
0: तो ये ऐसा वो माहौल था।
1: जी, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था। जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शोले याद है, इतनी सारी फिल्में याद है। जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: पैसे कितना रोमांचक था ये,
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह
1: वो
0: वाह।
1: झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
0: हाँ हाँ,
1: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे
0: चढ़
1: पे
0: रहा
1: चढ़
0: है,
1: रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया।
0: जी जी
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी,
0: लड़की बने थे?
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया,
0: ओ
1: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया।
0: जी
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे।
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहाँ जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से

0: सा था और 2.5 एकड़ प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में, तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे।
1: जी,
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां एक साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे, कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली।
1: जी
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थी कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी,
1: थे।
0: जी, जी,
1: आपने
0: जी।
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी,
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना
0: मुगले
1: सुनते थे,
0: आजम का गाना सुनते हैं,
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना
1: क्या,
0: क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है, और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी।
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी, तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक करते।
0: जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहाँ। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की 15 दिन की 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी।
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ, ओ, ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहाँ के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिन कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहाँ, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिन कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
0: वाह।
1: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्यतः,
0: ओहो
1: रुकिए राम राज आ रहा है।
0: हाँ।
1: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है। उसमें फिर

0: नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबाराम राजे थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक जी। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
1: जी।
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहाँ किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे
1: जी
0: थे और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहाँ सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के वो
0: जी
1: सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करें, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी
0: रे,
1: मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप रे,
1: मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था वो सारे आर्टिकल्स स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
0: तो एक
1: उस
0: सॉलिड
1: यूनिवर्सिटी।
0: बैकग्राउंड लेके
1: एक
0: गए।
1: सॉलिड बैकग्राउंड और प्रैक्टिकली भी, आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेचा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली वो
0: पैसे
1: स्टेज पे
0: फेंकते थे।
1: इतने पैसे फेंकते थे।
0: वाह,
1: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
0: पेट में लगा।
1: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई,
0: अरे बाप
1: उसके
0: रे।
1: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर बाई, केशर काकू, हम उनको
0: जी
1: काकू बोलते थे, तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था, अब
0: हाँ
1: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
0: मॉडल भी लेके गए।
1: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
0: अनुभव
1: और
0: है।
1: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया। और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
1: यार रहमान का लगाइए
0: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
1: या
0: दिल से।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। पर कुछ देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी आज के दूसरे सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली चुमकी। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और आरंभ करते हैं आज की हमारी दूसरी सभा।

श्रोताओं, सबसे पहले 6:05 पर आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मार आधुनिक गीत मेरेली एल थुलचुंग और उनके साथियों के आवाज में। जैमी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे जैमी भक्ति गीत इनोस्पा में और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 6:25। शाम के 6:45 पर आप सुनेंगे सौंधियार आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। दिमासा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे दिमासा आधुनिक गीत अंजुबोरा बर्मन और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 7:00।

7:20 पर आप सुनेंगे कार्बी कार्यक्रम के तहत कार्बी आधुनिक गीत मोजारी रंगहुई और उनके साथियों के आवाज में। कुकी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुकी पारंपरिक गीत नेंगहोंग नेम चंगलोय और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 7:40। 8:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप। समाचार संध्या आप सुन पाएंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात के 9 बजे आप सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। 9:30 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत।

आइए शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के गीतों का कार्यक्रम। सुनते हैं माड़ कार्यक्रम के तहत माड़ आधुनिक गीत मेरिली एल थ्रुचुंग और उनके साथियों के आवाज में।

आप सुन रहे थे मार आधुने गीत मैरिलिन एल थुलचंग और उनके साथियों के आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं जेमी भक्ति गीत इनोस्पा में और उनके साथियों के आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे जैमी भक्ति गीत का इनोस पामे और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।

आप सुन रहे थे संध्या आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं डिमासा आधुनिक गीत अंजुबोरा बर्मन और उनके साथियों के आवाज में।

आप सुन रहे थे कार्बी आधुनिक गीत मोजारी रोंगी और उनके साथियों की आवाज में। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।

0: सिस्को की पारंपरिक गीत नेंखम नेंग चंगलॉय और उनके साथियों के आवाज में।
1: कलाम तोल जोल चमचुंगा फुंगोल निकम न वे मु

0: långt fram här.
1: Lo zong
0: tang hen sin le ya.

Thăng hên xịt lìa.

0: श्रोताओ, आप आनंद ले रहे थे कुकी पारंपरिक गीत का नैंगखॉम नैंग चंगलॉय और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
0: आइए आप सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आनंद लेते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप का।

इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम आपको देंगे जानकारी हमारे जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होने वाले खेल जगत के अपडेट्स। हर हफ्ते रविवार को रात के 8:30 से लेकर 8:45 तक आप सुन पाएंगे सिर्फ FM 100.2 MHz पर स्पोर्ट्स राउंडअप। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम हमारे आकाशवाणी हाफलोंग सुनने वाले श्रोताओं को दे सके अपडेट्स स्पोर्ट्स जगत में होने वाले सभी एक्टिविटीज के बारे में। मैं हूं विक्रम पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र से। आइए आरंभ करते हैं इस हफ्ते का स्पोर्ट्स राउंडअप। आरंभ करते हैं हमेशा की तरह फुटबॉल के जगत से। दोस्तों, अभी द यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है। इस हफ्ते के मैचेस में सर्बिया को इंग्लैंड ने 1-0 से हराया, रोमानिया को यूक्रेन के अगेंस्ट 3-0 से जीत मिली, स्लोवेकिया ने बेल्जियम को 1-0 से हराया, ऑस्ट्रिया फ्रांस से 0-1 से हारी, टर्की ने 3-1 से जॉर्जिया को हराया, पोर्टुगल को 2-1 से चेक के अगेंस्ट जीत मिली, क्रोशिया और अल्बेनिया के बीच 2-2 का ड्रॉ रहा, जर्मनी ने हंगरी को 2-0 से हराया, स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड के बीच 1-1 का ड्रॉ रहा, स्लोवेनिया और सर्बिया के बीच भी 1-1 का ड्रॉ रहा और डेनमार्क और इंग्लैंड का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। स्पेन और इटली के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ। स्पेन ने 1-0 से इस मैच को इटली के विरुद्ध जीता। यूक्रेन ने स्लोवेकिया को 2-1 से हराया। पोलैंड को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट 1-3 से हार का सामना करना पड़ा और नेदरलैंड्स और फ्रांस के बीच 0-0 का ड्रॉ रहा। पॉइंट्स टेबल में अभी तक ग्रुप ए को टॉप कर रहे हैं जर्मनी 6 पॉइंट्स के साथ, ग्रुप बी को स्पेन 6 अंकों के साथ, ग्रुप सी के अभी तक के टेबल्स टॉपर हैं इंग्लैंड 4 पॉइंट्स के साथ, ग्रुप डी के टेबल्स टॉपर हैं नेदरलैंड्स जिनके भी 4 पॉइंट्स हैं, ग्रुप ई के टेबल्स टॉपर हैं रोमेनिया 3 पॉइंट्स के साथ और ग्रुप एफ को टर्की 3 पॉइंट्स से टॉप कर रही है। दोस्तों, इस हफ्ते हमारे ज़िले में चल रहे सेकेंड डिवीज़न सीनियर फुटबॉल लीग 2024 में एक ही मैच हुआ, चांपिजांग यूथ क्लब माहूर और हुंगवैंग के बीच। इस मैच को चांगपिजांग यूथ क्लब माहूर ने 6-0 से जीता। दोस्तों, ये थी जानकारी फुटबॉल के जगत से। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। अब बढ़ते हैं हॉकी की दुनिया में। हॉकी में FIH प्रो लीग चल रहा है। पिछले हफ्ते के मैचेस में ग्रेटर ब्रिटेन ने इंडिया को 3-2 से हराया, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया, स्पेन को ग्रेटर ब्रिटेन के अगेंस्ट 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, जर्मनी को ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से हराया, स्पेन को जर्मनी के अगेंस्ट 4-2 से जीत मिली, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेटर ब्रिटेन को 5-1 से हराया। वुमेन्स के पिछले हफ्ते के मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 4-3 से हराया, ग्रेटर ब्रिटेन ने इंडिया को 3-2 से हराया, चाइना और ग्रेटर ब्रिटेन का मैच 3-3 से ड्रॉ रहा, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी के विरुद्ध 2-3 से हार का सामना करना पड़ा, चाइना ने जर्मनी को 3-1 से हराया और ऑस्ट्रेलिया को ग्रेटर ब्रिटेन के अगेंस्ट 3-2 से जीत मिली। FIH प्रो लीग के स्टैंडिंग्स की बात करें तो मेंस में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर 34 अंकों के साथ बैठी है, दूसरे नंबर पर हैं अर्जेंटीना 29 पॉइंट्स के साथ, भारत 24 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। वुमेन्स के स्टैंडिंग में भारत का हाल बहुत ही बुरा है, भारत 8वें स्थान पर हैं 8 अंकों के साथ। वुमेन्स के पॉइंट्स टेबल में एक नंबर पर हैं नेदरलैंड्स 36 पॉइंट्स के साथ, दूसरे नंबर पर हैं अर्जेंटीना 34 अंकों के साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। अब बढ़ते हैं हमारे देश के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स की ओर, यानी कि क्रिकेट की ओर। भारत की महिला टीम और साउथ अफ्रीका के वुमेन्स टीम के बीच 3 मैचेस का बायलेटरियल सीरीज चल रहा है। इस हफ्ते हुए पहले मैच में भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की

इस मैच में भारत ने 326 रन का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका महज 4 रन से ये मैच हारी। साउथ अफ्रीका ने अपने 50 ओवर्स में 6 विकेट्स खोकर 321 रन बनाए। इस मैच में 4 सेंचुरियन थे। स्मृति मंदना ने 120 गेंदों में 136 रन्स, हरमनप्रीत कौर ने 88 गेंदों में नाबाद 103 रन्स, लॉरा उल्वर्ट ने 135 रन्स की नाबाद पारी खेली और मैरिजन काप ने 114 रन्स बनाए। इस मैच को जीतकर भारत ने ये सीरीज अपने नाम किया। दोस्तों, अभी आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप USA और वेस्टइंडीज में चल रहा है। इस हफ्ते के ग्रुप मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली। स्टोइनिस ने 29 गेंदों में 59 रन्स बनाए। इस मैच में स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 181 रन्स का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर्स में चेस कर लिया। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। पाकिस्तान को आयरलैंड ने 107 रन्स का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य को पाकिस्तान ने 18.5 ओवर्स में 7 विकेट्स खोकर बनाए। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 4 ओवर्स में 3 विकेट्स लेकर सिर्फ 22 रन्स खर्चे। नेपाल को बांग्लादेश के विरुद्ध 21 रन से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के 107 रन के लक्ष्य का पीछा करने आई नेपाल की टीम महज 85 रन में ऑल आउट हो गई। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे तंजिम हसन सकीब, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 4 विकेट्स लेकर सिर्फ 7 रन दिए। श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को एक तरफे मुकाबले में 83 रन से हराया। श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को 202 रन का टारगेट दिया था। नेदरलैंड्स 16.4 ओवर्स में 118 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे श्रीलंका के चरित असलंका, जिन्होंने 21 गेंदों में 46 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अफगानिस्तान ने PNG को 7 विकेट से हराया। PNG ने अफगानिस्तान को 96 रन का टारगेट दिया था। इस लक्ष्य को अफगानिस्तान ने 15.1 ओवर्स में 3 विकेट्स खोकर बनाए। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे अफगानिस्तान के फजल हुक फारूकी, जिन्होंने 4 ओवर्स में 16 रन देकर 3 विकेट्स चटके। साउथ अफ्रीका और नेपाल के बीच एक क्लोज एनकाउंटर में साउथ अफ्रीका ने नेपाल को 1 रन से हराया। साउथ अफ्रीका के 116 रन का लक्ष्य का पीछा करने आई नेपाल की टीम 114 रन पर सिमट गई। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी, जिन्होंने 4 ओवर्स में 19 रन देकर 4 विकेट्स लिए। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हराया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे निकोलस पोरन, जिन्होंने 53 बॉल्स में 98 रन की पारी खेली। इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 5 विकेट्स खोकर 218 रन बनाए। रिप्लाई में अफगानिस्तान की टीम 16.2 ओवर्स में 114 रन पर ही सिमट गई। दोस्तों, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली टीम्स इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और USA। सुपर 8 के मैचेस में साउथ अफ्रीका ने USA को 18 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने USA को 195 का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने आई USA की टीम 20 ओवर्स में 176 रन बना पाई। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 40 बॉल्स में 74 रन ठोक डाले। सुपर 8 के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात दी। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के सामने 181 रन का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने 17.3 ओवर्स में 2 विकेट्स खोकर बना लिया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, जिन्होंने 87 रन की नाबाद पारी खेली। भारत का पहला सुपर 8 का मैच USA के अगेंस्ट था। इस मैच को भारत ने

आसानी से 47 रन से जीता। भारत ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट्स खोकर 181 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 134 रन बना पाई। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण 53 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में अपने 4 ओवर्स में 7 रन देकर 3 विकेट्स चटके। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच रेन इंटरप्टेड मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को डीएलएस मेथड यानी कि डकवर्थ लुईस मेथड से 28 रन से हराया। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स, जिन्होंने अपने कोटा के 4 ओवर्स में 29 रन देकर 3 विकेट्स चटके। साउथ अफ्रीका ने एक क्लोज एनकाउंटर में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 6 विकेट्स खोकर 163 रन बनाए। रिप्लाई में इंग्लैंड 20 ओवर्स में 6 विकेट्स खोकर 156 रन ही बना पाई। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 38 गेंदों में 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यूएसए और वेस्टइंडीज के बीच हुए सुपर 8 के मैच में वेस्टइंडीज ने एक तरफे मुकाबले में यूएसए को 9 विकेट से हराया। यूएसए ने वेस्टइंडीज को 129 रन का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने आई वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 10.5 ओवर्स में 1 विकेट खोकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज के रॉस्टन चेज ने अपने 4 ओवर्स में 19 रन देकर 3 विकेट चटके। उनके इस परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उन्हें दिया गया। दोस्तों, ये थे अपडेट्स क्रिकेट की दुनिया से, और इसी के साथ इस हफ्ते का स्पोर्ट्स राउंडअप हम यहीं पे समेटते हैं। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी रात के 8:30 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी कि विक्रम पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे विक्रम पांडे। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी

0: राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.

0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस

0: प्राण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। डीआरआई अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं सिद्धार्थ पांडे।

हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई चिबाई कुलुम खूब लई कार्डम। आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से मैं सिद्धार्थ पांडे लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हाफलोंग। कल शनिवार के दिन आपने सुना इस हफ्ते का पहला एपिसोड, आज रविवार है। चलिए अब देरी ना करते हुए आज के सफर को शुरू करते हैं।

0: हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलोंग
1: जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हेलो हफलोंग से जुड़े हुए हैं प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से।
0: क्या सुनना चाहते हैं
1: सर जी? ये उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है, एक पर्यटन स्थल और एक ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पर महाकालेश्वर जी का।
0: जी,
1: वो अभी सावन का महीना चल रहा है और बहुत से तीर्थ यात्री उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मेरा एक सॉन्ग है, फिल्म का नाम है याराना।
0: जी,
1: वो याराना के गाने का बोल है, भोले ओ भोले, किशोर कुमार जी की स्वर में है ये सॉन्ग।

0: हेलो हफलोंग।
1: जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में है सर, बहुत आनंद में है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। और इस आनंदमय अंदाज में

0: बता दीजिए कि आपकी फरमाइश।
1: सर आज फिल्म हमराज का गीत है महेंद्र कपूर जी की आवाज में।
0: जी
1: किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है।

0: हेलो हफलोंग
1: एक चंद अखबार बोल रहा हूँ,
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं
1: परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी? बताइए अपने बारे में कुछ।
1: बस सर, सीनियर सिटीजन है और अपने कार्य से

0: सेवा भक्त हुए करीब लगभग 6 साल हो गया है।
1: जी, और रेडियो का सफर कब से शुरू हुआ आपके जीवन में?
0: रेडियो का सफर सर 1970 से चालू है।
1: जी, और बरकरार है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वही जज्वार, वही कहना चाहिए है, वो है जो पहले था, क्योंकि रेडियो का आनंद ही कुछ और है।
1: और है जी। और आप जो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, उनसे जब हम बातें करते हैं तो हमें भी बहुत जोश और उत्साह से हम भर
0: बिल्कुल
1: जाते
0: सर,
1: हैं।
0: बस सर ये हमारे जो रेडियो है ना, एक ऐसा साथी है
1: जी
0: जो किसी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अपने काम को रोके हुए हमको आनंद देता है, और जो काम करते हैं सर उसमें हम लोग का उत्साह भी बढ़ता है, क्योंकि कभी कभी आप लोग इतने अच्छे अच्छे हमारी फरमाइश से जो हमारे मित्र करते हैं, या आप लोग के द्वारा जो कार्यक्रम में हमारे जो पुराने गाने बजते हैं, खासतौर पर क्या है मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ सर, तो
1: जी
0: वो जो बजते हैं सर तो उसमें जो उत्साह होता है हम लोग को काम करने का, जज्बा भी बढ़ता है
1: जी
0: और आनंद भी बहुत मिलता है।
1: आज क्या सुनवाई बता दीजिए।
0: सर मुझे सुनवा दीजिए आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म है लाल पत्थर,
1: जी
0: और गाने के बोले सर उनके ख्याल आए तो आके चले गए।

0: हेलो हफलोंग।
1: सर नमस्कार,
0: नमस्कार
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ सर जी। बस
0: जी, कैसे हैं आप?
1: स्वस्थ है, मस्त है। दुकान में काम कर रहे थे, काम करते करते याद आया और बहुत टाइम हो गया, आज तो फोन लगाता हूँ, आज गाना सुनना
0: जी
1: है
0: जी शुक्रिया। और
1: जी।
0: आप जो बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि अन्य कॉलर्स को भी मौका मिलता है बातें करने का, है ना जी। और हम ये रिक्वेस्ट भी मैं करता रहता हूँ कार्यक्रम के माध्यम से, कि जो जिन कॉलर्स के कॉल इस हफ्ते शामिल हो चुके हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि

0: 2 हफ्ते के बाद ही अपना कॉल लगाइएगा ताकि बाकी के
1: जी मेरा
0: कॉलर्स को
1: भी
0: मौका मिलता
1: एक
0: है।
1: डेढ़ महीना हो गया व्हाट्सअप लगा था।
0: जी बहुत अच्छी सोच है आपकी, और इस प्रोग्राम के माध्यम से कौन से गाने को आप तक पहुंचाएं?
1: फिल्म का नाम है लहू के दो रंग,
0: जी
1: और हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा
0: जी
1: भी न जाने तो हम क्या जाने। जी और कुछ मित्र है मेरे,
0: जी बताइए उनके नाम।
1: सबसे पहले तो आप,
0: जी
1: और गंगाधर सावनकर है, तनुश्री महाराष्ट्र से है, भगवान सिंह परमार है।
0: तमाम मित्र और आप सब मिलकर इस गाने का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी। सर, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी,
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे हैं। इस समय मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है। जी
0: पर्यटकों से तो भरा रहता होगा शहर शिमला, है ना?
1: जी पर्यटक से तो बहुत भरा रहता है और बहुत जो है सैलानी आती है, खासकर जो मई जून का महीना होता है।
0: बर्फ को देखना चाहते हैं जो उन पर्यटकों के लिए कौन से महीने बेस्ट होगा वहां आने के लिए?
1: अगर पर्यटक को बर्फ देखनी हो तो दिसंबर आखिरी में और जनवरी में आपको आना चाहिए। और बाकी श्रोता को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बर्फ देखनी तो जनवरी में जरूर आए। और जब आप जनवरी में आते तो एक एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, आप जो है गर्म कपड़े जरूर साथ में रखें, क्योंकि हिमाचल में माइनस में तापमान चला जाता है, तो इसलिए ठंड ठंड आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैकेट या वगैरह ऊन की जो जो आपके जो होते हैं ग्लव्स वगैरह उसका इस्तेमाल जरूर करें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए, जिससे हम सबको बहुत जानकारी मिली। अब अपनी फरमाइश आज की बता दीजिए।
1: आज मुझे एक गाना सुना है, दिल का क्या कसूर, और गाने की बोल रहे हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना।

0: हेलो हफलोंग
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सुरन जिला विधि समस्तीपुर।
0: जी। मोहम्मद हारून जी,
1: जी बस
0: क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: कुछ नहीं है, बस कुछ चारा ले आते हैं, कुछ छेली को चला लेते हैं, कुछ काम मिल जाता है, आपसे बातचीत हो जाती है, फोन लगा लेते हैं। जी
0: मस्त चल रहा है जीवन, है ना?
1: जीवन मस्त चल रहा है हमारा तो। फिल्म का नाम है दिल दीजिए पागल, माफिया का सुना देना, कुमार सानू में लगाया आदमी की आवाज।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आपका।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो हाफलोंग सर जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: एसी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। बहुत
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, और आप कैसे हैं?
0: मस्त हैं। क्या करते हैं आप?
1: मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बता दीजिए।
1: आज सर आप सुनवा दीजिएगा, मूवी का नाम है वतन के रखवाले,
0: जी
1: और इसमें गाना है एक अपना देशभक्ति सॉन्ग है, तो अपने सभी देश के वीर जवानों को डेडिकेट रहेगा कि इस धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने डाले, और इस धरती को

दोस्तों, इन्हीं रिक्वेस्ट सॉन्ग्स के साथ ही हेलो हफलोंग का इस हफ्ते का सफर अब हो चुका है पूरा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और यूं ही जारी रहेगा सफर मनोरंजन का। श्रोताओं, आपको बता दें, हेलो हफलोंग की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, और प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर होता है रात 9 बजे शनिवार और रविवार के दिन। अब आप नोट कीजिए हमारा नंबर हमें कॉल करने के लिए। हमारा नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर से 9435700596। जिन श्रोताओं के कॉल्स इस हफ्ते शामिल हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगले 2 हफ्ते के अंतराल के बाद ही आप हमें कॉल कीजिए, ताकि अन्य कॉलर्स को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। और हाँ श्रोताओं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। हमारा फेसबुक आईडी है आकाशवाणी हाफलॉन्ग, साथ ही इंस्टा आईडी आकाशवाणी हाफलॉन्ग ही है। यूट्यूब चैनल आकाशवाणी हाफलॉन्ग पर आप जाके वहाँ हमारे बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपने दोस्त सिद्धार्थ पांडे को इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबले कारडोम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।
1: Hey guys, आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए अभी आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत।

पहला गीत पेश करने से पहले मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। श्रोताओं, इश्क खूबसूरत है, कोई गुनाह नहीं। इश्क खूबसूरत है, कोई गुनाह नहीं। इससे जुदा तो खुदा भी नहीं।

दिल की हर धड़कन तेरे नाम की गवाही देती है। दिल की हर धड़कन तेरे नाम की गवाही देती है। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है।

दोस्तों, प्यार का नशा एक ऐसा अनोखा एहसास है जिनमें इंसान होश में होकर भी खोया खोया रहता है।

तेरे बिना अधूरी है मेरी जिंदगी, जैसे बिना चांद के रात अधूरी। तेरे मोहब्बत का ये आलम है, हर पल तेरा इंतजार है। तुमसे मिलकर समझा हो प्यार का असली मतलब क्या। तुमसे नफरत नहीं, बस तुम्हारे बिना जीना नहीं। तू मेरी धड़कन, तू मेरा सुकून, तेरा साथ हो तो हर लम्हा है खूबसूरत।

प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पर एतवार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों को पूरी जिंदगी भर इंतजार करते रहे।

श्रोताओ, समय के पाबंदी के कारण इसी के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी चुमकी को दीजिए अनुमति। सुप्रभात, जय हिंद।